0: சோறு பவன கரே சோறு
1: अरे बात या संतोष शोर नहीं शोर शोर यार शोर
2: द सेम वर्किंग मैन बी यू डू इट योर स्टाइल एंड यू डू इट द वे यू लाइक.